0: सहस्रधारो अक्षितः
1: मे अस्तु धान्यगुं सहस्रधारमक्षितम्
0: धनधान्यै स्वाहा
1: भूता प्रचरन्ति जिवान सम्बलिमिच्छन्तो विदुदस्य प्रेत्याः
0: एभ्यो बलिम् पुष्टिकामोहरामि मयि पुष्टिम् पुष्टिपदिर्दद

दुख मीन्स सॉरो और डिस्ट्रेस, भंजन मीन्स टू डिस्ट्रॉय. सो इन दिस लाइन दुख भंजन तेरो नाम ओ साई, वी हेल लॉर्ड साई एज द वन हुज वेरी नेम इट सेल्फ रिमूव्स ऑल पेन ऑल कंप्लेन ऑल डिस्ट्रेस. लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड लाइन.

0: You were listening to Lutfullah Bulent Gunaralp rendering selected devotional repertoire from Western classical music.
1: You are tuned to Radio Sai Global Harmony, bringing you 24 hours a day the message of love of Bhagavan Sri Satya Sai Baba.
2: We now bring you a recital from the Sikh scripture, the Guru Granth Sahib.
3: Ekko Omkar Satnam Karta Purakh Nirbhau Nirvair Akal Murta Juni Sapangur Prasad Arag Gond Chaupade Mahalla Chautha Kar Pahla Je Man Chete Aas Rakhay Hari Upar Tamar Chinde Anek Anek Phal Pai हर जाने सब किश जो जिए वरतै प्रभ कालिया किसै का एक तिल ना गवाई हर जिसकी आस की जय मन मेरे जो सब मैं स्वामी रहा समाई मेरे मानो आसा कर जगदीश गुसाई जो बिन हर आस अवर काहूं की जय साने फल आस सब बिरथी जाई रहाओ जो दिसे माया मोह कुटंब सब मत तिसकी आस लग जन्म गवाई इनके किश हाथ नहीं कहां करे एह बपड़े इनका वाहया आकाश नाम वसाई मेरे मन आस कर हर प्रीतम अपने की जो तुझ तारे तेरा कुटंब सब छड़ाई जे किश आस अवर करह पर मित्री मत तू जाने तेरे कितै कम आई एह आस पर मित्री पाओ दूजा है खिर मैं झूठ बिनस सब जाई मेरे मन आसा कर हर प्रीतम साचे की जो तेरा कालिया सब थाए पाई आसा मनसा सब तेरी मेरे स्वामी जैसी तू आस करावे तैसी को आस कराई किश किसी के हाथ नहीं मेरे स्वामी ऐसी मेरे सतगुरु बुझ बुझाई जन नानकी आस तू जाने हर दर्शन देख हर दर्शन तृप्ताई गोंड महला चौथा ऐसा हर सेवी है नित्य आई है जो खिन मैं किले विखो सब करे बिनासा जे हर त्याग अवर की आस की जय ता हर नेफल सब काल गवासा मेरे मन हर सेवो सुखदाता स्वामी जित सेवे सब भूख लहसा मेरे मन हर ऊपर की जय परवासा जह जाइए तह नाल मेरा स्वामी हर अपनी पैज रखे जन दासा रहाओ जे अपनी बिरथा कहो अवरा पहे ताया गए अपनी बिरथा बह बहुत कढासा अपनी बिरथा कहो हर अपने स्वामी पहे जो तुमरे दुख तत्काल कटासा सो ऐसा प्रभ छोड़ अपनी बिरथा अवरा पहे कहिए अवरा पहे कहे मन लाज मरासा जो संसार है के कुटंब मित्र भाई दिसे मन मेरे ते सब अपने स्वाय मिलासा जे दिन

तुद उपकरै दुख सुखासा तिसका परभाषा, क्योंकि जय मन मेरे जो अंती अवसर रखना सुकासा। हर जप मंत गुरु उपदेश लै जापो तने अंत छडाए जिन हर प्रीत चितासा। जन नानक अंदर नाम जपो हर संतो एहो छूटन का साचा परभाषा। गोंड महला चौथा, हर सिमरत सदा होए आनंद सुख अंतर सांत शीतल मन अपना। जैसे सगत सूर बहु जलता गुर सस देखे लह जाए सब तपना। मेरे माने अंदन त्याए नाम हर जपना, जहां कहां तुझ राखै सब ठाई। सो ऐसा प्रभ सेव सदा तू अपना रहाओ। जा मैं सब निदान सो हर जप मन मेरे, गुरमुख खोज लो हर तना। जिन हर त्याया तिन हर पाया मेरा स्वामी, तिन के चरण मलो हर दसना। शब्द पछाण राम रस पावो, ओ उत्तम संत भयो बड़ बड़ना। ते जन की वडियाई हर आ वधाई, ओ कटै ना किसै की कटाई। एक तिल तिल तिल ना, जिस ते सुख पावै मन मेरे, सो सदा त्याय नित कर जुड़ना। जन नानक हर दानिक दीजै, नित बसै हृदय हरी मोहि चरना। गुण महला चौथा, जितने साहा पात साह उमराव सिकदार चौधरी, सब मिथिया झूठ पाव दूजा जान। हर अबनासी सदा थर नेह चलो, तिस मेरे मन भज परवान। मेरे मन नाम हरी पज सदा दीबान, जो हर महल पावे गुरबचनी। तिस जेवड़े अवर नाही किसै दातान। रहाओ जितने तनवंत कुलवंत मिलखवंत, दिसै मन मेरे सब बिनस जाहे। जो रंग कुसुंभक जान, हर सत निरंजन सदा सेव मन मेरे। जित हर दरगह पावे तू मान, ब्राह्मण खत्री सूद वैस चार वर्ण चार आश्रम है। जो हर त्यावै सो प्रधान, ज्यो चंदन निकट वसै हिरड बपड़ा। त्यों सतसंगत मिल पतत परवान, ओह सब ते उचा सब ते सूचा। जा कै हृदय वसया भगवान, जन नानक तिसके चरण पखालै। जो हर जन नीच जात सेवकान। गोंड महला चौथा, हर अंतर जामी सब तै वरतै। जिहा हर कराए तिहा को करैयै, सो ऐसा हर सेव सदा मन मेरे। जो तुदनो सब दू रख लईयै, मेरे मन हर जप हर नित पढ़ैयै। हर बिन को मार जी वाल ना साकै, ता मेरे मन कायत कड़ैयै। रहाओ हर परपंच किया सब करतै, विच आपे अपनी जोत रहीऐ। हर एक को बोले हर एक बोलाए, गुरपूरै हर एक दिखाइऐ। हर अंतर नाले बाहर नाले, कहो तिस पासो मन क्या चोरैयै। निह कपट सेवा कीजै हर केरी, ता मेरे मन सर्व सुख पईऐ। जिस दै वस सब किछ सो सब दू वड्डा, सो मेरे मन सदा धियै। जन नानक सो हर नाल है तेरै, हर सदा त्याय तू तुदले छडैयै। गोंड महला चौथा, हर दर्शन कहो मेरा मन बहुत तृप्तै। ज्यो त्रिखावंत बिनीर मेरे मन प्रेम लगो हर तीर। हमरी बेदन हर प्रभ जानै, मेरे मन अंतर की पीर। रहाओ मेरे हर प्रीतम की कोई बात सुनावै, सो भाई सो मेरा वीर। मिल मिल सदा सो मेरे मन सदा धियै। जन नानक सो हर नाल है तेरै, हर सदा ध्याय।

ले सतगुर की मत धीर, जन नानक की हर आस पुजावो, हर दर्शन सांत शरीर। शकायक राग गौंड महला पंजवा, चौप देकर पहला एक ओंकार। सतगुर प्रसाद सब करता सब भुगता रहाओ, सुनतो करता पेखत करता, दृष्टो करता दृष्टो करता, उपत करता परलो करता, व्याप्त करता लिप्तो करता, भक्तो करता बूझत करता, आयावत करता जात पी करता, निर्गुण करता सरगुण करता। गुर प्रसाद नानक समदृष्टा, गोंड महला पंजवा, फाक्यो मीन कब की न्याई, तू उर्ज रहे हो कुसुम भायले, पगतारे सास ले खैले, तो उदरे हर गुण गायले, मन समझ छोड़िया वायले, अपने रहन को ठौर ना पावे, काए पर कह जायले रहाओ। ज्यो मैंगल इंद्री रस प्रेरियो, तू लाग परयो कुटुंबायले, ज्यो पंखी एकत्र होए फिर बिशरै, तेरे संगत हर हर त्याय ले, जैसे मीन रसन सा

हो कृपाल दीन दुख पंजन, सब तुमरे जी जनता एले पावो दान सदा दर्श पेखा, मेरे नानक दास दसाएले। राग गुण महला पंजवा, चौपदे कर दूजा एक ओंकार, सतगुर प्रसाद जी प्राण किए जनसाज, माटी मैं जोत रखी निवाज।

रहाओ जिन किए रंग अंक प्रकार, उपत परलो निमख मझार, जा की गत मत कही ना जाए। सो प्रभ मन मेरे सदा ते आए, आए न जावे निश्चल तनी, बेअंत गुणा ताके केत गनी। लाल नाम जाके परे भंडार, सगल घटा देवे आधार। सत पुरख जा को है नाओ, मिटे कोट अग निमख जस गाओ। बाल सिखाई भगतन को मीत, प्राण आधार नानक हित चीत।

ओट नाम जपत मिटै पाप कोट रास दी हरे को नाम मन का इष्ट गुर संग ध्यान रहाओ नाम।

ब्रह्म का करै वख्याण। जोगी जति वैष्णो रामदास, मित नाही ब्रह्म अविनाश। करण पलाहा करै शिवदेव, तिल नहीं बूजै अलख्या पहेव। प्रेम भगत जिस आपे दे, जग में विरले के ही के। मोहे निर्गुण गुण किशु नाहे, सर्व निधान तेरी दृष्टि माहे। नानक दीन जाचै तेरी सेव, कर कृपा दीजै गुरुदेव। गोंड

अपने कर्म की गत मैं क्या जाना, मैं क्या जाना बाबा रे रहाओ। हाड़ जले जैसे लकड़ी का तूला, केस जले जैसे कास का पूला। कहो कबीर तभी नर जागे, जम का डंड मूड में लागे। गोंड आकाश गगन पाताल गगन है, चौदस गगन रहाए ले। आनंद मूल सदा प्रखोतम, कट बिनसै गगन न जाए ले। मोहे बैराग पयो एहो जियो आए, कहां गयो रहाओ। पंच तत् मिल काया कीनी, तत् कहां ते कीन रे। कर्म बद तुम जियो कहता हो, कर मैं किन जियो दीन रे। हर मैं तन है, तन मैं हर है, सर्ब निरंतर सोए रे। कहे कबीर राम नाम ना छोड़ो, सहजे होए सो होए रे। राग गोंड बाणी कबीर जियो की, कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। पूजा बांध पिला कर डारियो, हस्ती क्रोप मूड़ में मारियो। हस्त पाक कैची

वाका अंतर नहीं संतोख, बिन सोहागन लागै दोख। तन सोहागन महापवीत, तपित पीसर डोलै चीत। रहाओ सोहागन किरपन की पूती, सेवक ताज जगत स्यों सूती। साधु कै ठांडी दरबार, शरण तेरी मोको निस्तार। सोहागन है अत सुंदरी, पग नेवर शनक शन हरी। जौ लग प्राण तऊ लग संगे, नाहे ता चली बेग उठ नंगे।

पांच नारद कै संग बेदवार, पांच नारद के मिटवे फूटे, कहो कबीर गुर कृपा छूटे गोंड। जैसे मंदिर में बलहर ना ठहरै, नाम बिना कैसे पार उतरै, कुंभ बिना जल ना टीकावै, साधु बिन ऐसे अवगत जावै, रहा जा रो तिसे जो राम ना चेतै, तन मन रमत रह मैं खेतै, रहाओ जैसे हलहर बिना जिमी नहीं बोई है, सूत बिना कैसे मणि परोई है, कुंडी बिन क्या गंठ चढ़ाई है, साधु बिन तैसे अवगत जाई है, जैसे मात पिता बिन बाल ना होई, बिंब बिना कैसे कपड़े धोई, कोर बिना कैसे असवार, साधु बिन नाहीं दरबार, जैसे

मन कूट तो जमते छूट कुट कुट मन कसवटी लावे सो कूटन मुक्त बहु पावे। कूटन किसे कहो संसार सगल बोलन के माहे विचार रहाओ। नाचन सोए जो मन स्यो नाचे झूठ ना पतिए पर चै सच है। इस मन आगे पूरे ताल इस नाचन के मन रखवाल। बजारी सो जो बजार है सो दे पांच पलीत कौ प्रभो दे। नौ नायक की भक्त पछान सो बाजारी हम गुरमाने। तस्कर सोए जे तात ना करे इंद्री के जतन नाम उचर। कहो कबीर हम ऐसे लखन धन गुरुदेव अतरूप बिचखन गौंड।

गौंड पैरों पूत सी तला धावै खर बाहन ओशारो डावै हाँ तो एक रमैया लै हो आन देव बदला वंदै हो रहाओ शिव शिव करते जो नर त्यावै बर्द चढ़े डौरू टमकावै महामाई की पूजा करै नरसै नर होए अवतरै तू कहत ही अद भवानी मूत की बरिया कहां छपानी गुरमत राम नाम गहो मीता प्रणवै नामा यो कह गीता।

मारिया था। पांडे तुमरा रामचंद सो भी आवत देखा था, रावण सेती सरबर होई कर की जो गवाई थी। हिंदू अन्ना तुरकू काना दोहा ते ज्ञानी सियाणा, हिंदू पूजै देहोरा मुसलमान मसीत, नामे सोई सेव्या जय देहोरा नाम सीत। रागौंड बाणी रविदास जियो की कर दूजा एको अंकार सतगुर प्रसाद। मुकंद मुकंद जपो संसार, बिन मुकंद तन होए अवहार। सोई मुकंद मुक्त का दाता, सोई मुकंद हमरा पित माता। जीवत मुकंदे मरत मुकंदे, ताके सेव कौसदा आनंदे रहाओ। मुकंद मुकंद हमारे प्राणं, जप मुकंद मस्तक निशानं। सेव मुकंद करै बैरागी, सोई मुकंद दुर्बल तन लादी। एक मुकंद करै

जप मुकंद सेवा ताहू की गौंड जे हो 68 तीर्थ नावै जे हो द्वादश शिला पूजावै जे हो कूप तटा देवावै करै निंद सब बिरथा जावै साधका निंदक

करने दो कमने नहीं गुना। जे हो अनक प्रसाद करावे भूम दान शोभा मंडप पावे। अपना बिगार बिराना संड करे निंद बोजो नी हंड। निंदा कहाँ करो संसारा निंदक का प्रगट पहारा। निंदक सोध साध बिचारिया कहो रविदास पापी नरक सिधारिया। जोड़ राम कली।

अकाल मूर्त अजूनी सह पंगुर प्रसाद। कोई पढ़ता सहसा किरता, कोई कड़े पढ़े पुराना, कोई नाम जपै जप माली, लागै तसै त्याना। अब ही कभी किशु ना जाना, तेरा एको नाम पछाना। ना जाना हरे मेरी कवन गते, हम मूर्ख ज्ञान शरण प्रभ तेरी, कर कृपा राखो मेरी लाज पते रहाओ। कब हूं जियाड़ा ऊब चढ़ता है, कब हूं जाए प्याले, लोभी जियाड़ा थिर ना रहता है, चारे कुंडा पाले। मरण लिखाए मंडल में आए, जीवन सा जय माई, एक चले हम देखे स्वामी, पाहे बलंती आई। ना किसी का मीत ना किसी का भाई, ना किसे बाप ना माई, प्रणवत नानक जे तू देवे अंते हुए सखाई। राम कली महला पहला, सर्ब जोत तेरी पसर रही, जय जय देखा तै नरहरी। जीवन तलब निवार स्वामी, अंध कुप माया मन गाड़िया, क्यों कर उतरो पार स्वामी रहाओ। जह पीतर कट पीतर बसया, बाहर काहे नाही, तिन की सार करे नित साहेब, सदा चिंत मन माही। आपे नेड़ा आपे दूर, आपे सरबरया भरपूर, सतगुर मिले अंधेरा जाए, जह देखा तै रया समाए। अंतर सहसा बाहर माया, नैनी लग सबाणी, प्रणवत नानक दासन दासा, परता पैगा प्राणी। राम कली महला पहला, जित दर वसै कमन दर कहिय, दरा पीतर दर कमन लह। जिस दर कारण फिरा उदासी, सो दर कोई आए कह। किनबिद सागर तरिय, जीव त्याने मरिय रहाओ। दुख दरवाजा रोहो रखवाला, आसा अंदेसा दोए पट जड़े। माया जल खाई पानी कर बांधया, सत कै आसन पुरख रहै।

करे, जब आशा अंदेशा तब ही क्यों कर एक कहे, आशा पीतर रहे निराशा तव नानक एक मिले। इन विद सागर तरिये जीवत आयो मरिय रहाओ दूजा, राम कली महला पहला सुरत शब्द साखी मेरी सिंगी बाजे लोक सुने। पत झोली मंगण कै ताई पीखिया नाम पड़े, बाबा गोरख जागे गोरख सोजन गोए उठाली करते बार ना लागे रहाओ। पानी प्राण पवन बंद राखे चंद सूरज मुख दिए, मरण जीवन कौ धरती दीनी एते गुण विसरे। सिद्ध साधक अर योगी जंगम पीर पुरुष बहु तेरे, जेतन मिला ता कीर्त आखा ता मन सेव करे। कागद लून रह कृत संगे पानी कमल रह, ऐसे भगत मिले जन नानक तिन जम क्या करे। राम कली महला पहला सुन माशिंद्रा नानक बोले, वसगत पंच करे नहीं डोले। ऐसी जुगत जो कौ पाले आप तरह सगले कुल तारे, सो अवधूत ऐसी मत पावे अहनिस सुन समाध समावे रहाओ। भिखिया पाए भगत पै चल होवे सो तृप्त संतोख अमुले, ध्यान रूप होए आसन पावे सच नाम ताड़ी चितलावे। नानक बोले अमृत बाणी सुन माशिंद्रा औदू निशानी, आसा महे निराश वलाए निहचो नानक करते पाए। प्रणवत नानक अगमुख सुनाए गुर चेले की संद मिलाए, दिखिया दारू भोजन खाए छे दर्शन की सोजी पाए। राम कली महला पहला हम डोलत बेड़ी पाप भरी है पवन लगे मत जाई, सनमुख सिद्ध पेटन को आए निश्चो दे वड़ियाई। गुर तार तारन हारिया देह भगत पूर्ण अविनाशी, हाँ तुझको बलिहारिया रहाओ। सिद्ध साधक जोगी अर जंगम एक सिद्ध जिनी त्याया, परसत पैर सिजते स्वामी अखर जिनको आया। जप तप संजम कर्म ना जाना, नाम जपी प्रभ तेरा गुर परमेसर नानक पेटेओ साचे शब्द नवेरा। राम कली महला पहला सुरती सुरत्र लाइए एत, तन कर तुलहा लंगे जेत अंतर पाहे तुसै तू रख अहनस दीवा बलै अथक।

पाए जिन किश किया सो किश करै, अपनी कीमत आपे तरै। गुरमुख प्रगट होवा हर राय, ना को आवै ना को जाए। लोक तिकार कहै।